0: की एक बस्ती में रहने वाला। आज यहाँ आया है मुंबई बेचने। बदले में कुछ तो चाहता होगा। क्या?
1: मांडवा
0: रावण से उसकी लंका ही मांग ली।

0: Elembu FM 89.6 MHz.
1: हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: இளம்பு பிரேக் டைம்.
1: சேவா புக் ஸ்டோர் சௌதாரா பாஸ் சிந்தபால்சுக்
0: அம்ரா சேவாஹரு
1: स्टेशनरी का सम्पूर्ण सामानहरू,
0: फोटोकपी प्रिन्ट,
1: कलर प्रिन्ट,
0: पीवीसी आईडी कार्ड,
1: सबै प्रकारका खेलकुद सामग्रीहरू,
0: सबै तहको तथा विभिन्न पुस्तकहरू,
1: सबै प्रकारका कम्प्युटर सम्बन्धी कामहरू,
0: ट्रफी,
1: मायाको चिनो,
0: मेडल,
1: फ्रेम,
0: जर्सी सेटहरू तथा प्रिन्ट,
1: सब्लिमेसन प्रिन्ट,
0: जर्सी प्रिन्ट,
1: कस्टमाइज कप प्रिन्ट,
0: मेटल फोटो प्रिन्ट,
1: प्रोप्राइटर
0: प्रकाश श्रेष्ठ,
1: सेवा स्टेशनरी एन्ड सप्लायर्स.
0: कन्ट्याक्ट नम्बर 9841924274.

नागिन नागिन कितने शॉट्स पिए नागिन फिर कभी बाएं फिर कभी दाएं नाचे तू जैसे नागिन कहीं तेरा फोन है कहीं तेरे शूज है थोड़ी गुस्से है थोड़ी कंफ्यूज है लगती है प्यारी पर उड़े तेरे फ्यूज है दिल करे ब्रेक तू ब्रेकिंग न्यूज है तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो मुझसे दूर रहो मुझे माफ करो।

0: अरुणिको होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट प्राइभेट लिमिटेड चौतारा स्वागत छ गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक हाउस अफ दिस डिलक्स रूम विथ एसी हट एण्ड कोल्ड वाटर एलईडी टिभी सेमिनार हल रेस्टुरेन्ट एण्ड बार फ्री वाइफाई पार्किङ एरिया फ्यामिलियर एण्ड जोयफुल इन्भाइरोमेन्ट कस्टमर सटिस्फेक्सन इज आवर कन्जुगेन्स न्यू अरुणिको होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट प्राइभेट लिमिटेड चौतारा स्वागत छ गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक इमेल होटल अरुणिको @gmail.com कन्ट्याक्ट 0116206906982293 न्यू अरुणिको होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट प्राइभेट लिमिटेड चौतारा स्वागत छ गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक
1: Let's go. This is your radio. This is LMWFM 89.6 megahertz. 89.6 megahertz.
2: Oh God, one more remix.

0: दिदी फेरि फेरि रमाइलो गरौँला,
1: अब त साह्रै रमाइलो भयो, भगवान् रामले सबैको कल्याण गरौँ ल, आज म गएँ है।
2: परेली संगीत कुञ्ज प्रस्तुत गर्दछ।